0: जब टुकड़ों का रंग हल्का भूरा हो जाए तो उन्हें पलट कर दोबारा ढांप दीजिए। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए कि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल गया है या नहीं। अगर ये पक चुका हो तो पैन से निकाल लीजिए। अगर मुर्गी के गोश्त का कोई टुकड़ा पैन की सतह से चिपक जाए तो किसी गीले कपड़े से इसकी सतह को ठंडा कीजिए। इस तरह चिपका हुआ टुकड़ा उतर जाएगा। इसके बाद हम शिमेजी खुम्बियाँ पकाएंगे।
1: शिमेजी खुम्बियों को फ्राइंग पैन में फैलाकर उन पर थोड़ा नमक छिड़क दें। ढके बगैर धीमी आंच पर पकाएं और इस दौरान उन्हें उलट पुलट करते रहें। जब उनकी रंगत हल्की भूरी हो जाए और ये नरम हो जाएं, तो आंच बंद कर दीजिए। दाशी यखनी और सोया सॉस में डूबी हुई सब्जियों को बाहर निकालकर खुश कर लीजिए। उन्हें एक प्लेट में तरतीब दीजिए। पके हुए मुर्गी के टुकड़ों को 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियों की शक्ल में काट लीजिए। मुर्गी और शिमेजी खुम्बियों को इन सब्जियों पर फैला दीजिए।
2: おひたしサラダの出来上がりです。出来上がりにごまを散らしても美味しいですよ。
0: おひたしサラダ तैयार है। अगर इस पर तिलों का इजाफा कर दिया जाए तो लज़त में कुछ और इजाफा हो जाएगा।
1: तो सामिन अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी तरकीब की जानिब, जो है श्रिंप और एवोकाडो सलाद। ये तरकीब 4 अफराद के लिए है। इसके लिए आपको दरकार होंगे झींगे 8 अदद या 160 ग्राम, 1 एवोकाडो, 10 अदद छोटे टमाटर और सलाद के 3 पत्ते। ड्रेसिंग तैयार करने के लिए आपको दरकार होगी 1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच लीमो का रस, 5 ग्राम अदरक और 20 ग्राम प्याज। इसके अलावा झींगों को उबालने के लिए आपको चाहिए 1/2 चाय का चम्मच नमक। और एवोकाडो की रंगत बरकरार रखने के लिए ज़रूरत होगी 1 चाय के चम्मच लीमो के रस की। इस तरकीब में हम कुल निसफ लीमू का रस इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो झींगे इस्तेमाल करेंगे उनके सर हटा दिए गए हैं, लेकिन खोल मौजूद हैं और उनकी लंबाई तकरीबन 6 सेंटीमीटर है। किसी कांटे या लकड़ी की सीख को इस्तेमाल करते हुए झींगे की अंदरूनी आंत साफ कर दीजिए। झींगे के खोल पर बाहर की सिम जोड़ों के दरमियान में एक कट लगाइए और अंदरूनी आंत को बाहर निकाल लीजिए। अगर आप कई जगहों से इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो इसे साफ कर पाएंगे।
1: जब अंदरूनी आंत साफ हो जाए तो एक बर्तन में 200 मिलीलीटर पानी उबालिए। इसमें कुछ नमक का इजाफा करके खोल के आखिरी हिस्से समेत झींगे को इसमें डाल दीजिए। झींगे को धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाइए, यहां तक कि उनका खोल सुर्ख और गोश्त सफेद रंगत इख्तियार कर ले।
2: こうして塩

0: ये छिलका उतारने के बाद इन निसफ टुकड़ों को लंबाई में काटकर हर टुकड़े के आर पार छुरी चलाते हुए 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े काट लीजिए। रंगत बरकरार रखने के लिए उन पर थोड़ा सा लीमों का रस डाल दीजिए।
1: छोटे टमाटरों के पत्ते और डंठल हटा दीजिए, उन्हें लंबाई में निस्फ कर लीजिए। सलाद के पत्तों को भी 4 सेंटीमीटर के चौकोर टुकड़ों में काट लीजिए।
0: सब्जियां तैयार करने के बाद अब हम ड्रेसिंग बनाएंगे।
1: इस सलाद में ड्रेसिंग को कलीदी हैसियत हासिल है। सोया सॉस से तैयार की जाने वाली इस खुशबूदार ड्रेसिंग में तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता।
0: सबसे पहले एक बर्तन में सोया सॉस और लीमू का रस डालिए। अदरक को कद्दूकश करने के बाद सॉस में उसका रस निचोड़ दीजिए।
1: आखिर में जब हम इस ड्रेसिंग में कद्दूकश की गई प्याज मिलाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। गो के इसमें तेल नहीं है, लेकिन इसी गाढ़ेपन की वजह से ये सब्जियों पर अच्छी तरह लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कि झींगे कुछ ठंडे हुए या नहीं। अगर ठंडे हो चुके हैं तो इनके खोल उतार कर 2 सेंटीमीटर छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। जब तमाम अज़ा तैयार हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में तरतीब दीजिए। सबसे पहले प्लेट में सलाद के पत्ते रखिए और फिर झींगे, अवोकाडो और टमाटरों को उनके ऊपर डाल दीजिए।
0: खाने से फौरन पहले ड्रेसिंग डालिए और पेश कीजिए। अगर कटे हुए खुश्क मेवाजात भी इस सलाद पर फैला दिए जाएं, तो इसके जायके में इजाफा हो जाएगा।
1: दो खुशनुमा ओकज सलाद तैयार हैं। गो के हमें खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी खुराक से लुत्फ अंदोज भी होना चाहिए। बराए मेहरबानी ज़ियाबीतस से बचाव के लिए इन 2 ओका सलाद को अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाइए।
0: जी तो सामईन, अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट कैच ऑफ द डे का। आज हम ज़ियाबीतस से बचाव के लिए खाने से मुतल्लिक मुवस्सर आदात अपनाने के बारे में बात करेंगे। तो सोफिया, सबसे पहले मोहतरमा आकिको वातानाबे आपको एक बुनियादी मशवरा देना चाहती हैं।
1: सबसे अहम बात तो यह है कि जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ना खाएं।
0: जी, वातानाबे साहिबा का कहने का मतलब है कि ज़ियाबीतस से बचाव के लिए अहम बात यह है कि आपकी खुराक की मकदार क्या हो, खसूसा निशास्ता, शक्कर और चिकनाई। खाने के बाद हर किसी के खून में शुगर की सतह बुलंद हो जाती है। एक सेहतमंद शख्स के खून में शुगर की ये मकदार चंद घंटों के बाद अपनी मामूल की सतह पर आ जाती है। लेकिन अगर आप हद से ज्यादा शक्कर या चिकनाई इस्तेमाल करें तो शुगर को मामूल की सतह पर लाने वाले हार्मोन्स सुस्त पड़ जाते हैं। अगर आप इसके इलाज के कोई तदबीर नहीं करते तो आप ज़ियाबीतस के मरीज बन जाते हैं और आपके खून में शुगर की सतह मुसलसल बुलंद रहने लगती है।
1: वैसे गुल साहब, आपको इल्म है कि जापान में आबादी का तकरीबन 10% हिस्सा ज़ियाबीतस का मरीज है और इस तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में ज़ियाबीतस के बढ़ती हुई बीमारी एक संजीदा मसला है। आलमी इदारे सेहत WHO ने ऐलान किया था कि 2014 में ज़ियाबीतस से मुतासिर होने वाले बालिग अफराद की तादाद 42 करोड़ 20 लाख तक पहुँच चुकी थी।
0: वो तो सवाल फिर ये है कि ज़ियाबीतस से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। मोहतरमा वातानाबे कहती हैं कि सिलसिले में एक काम ऐसा है जो हर कोई बहुत आसानी से कर सकता है।
1: एक अहम बात तो ये है कि आप किस तरतीब से खाना खाते हैं। मैं सबसे पहले सलाद खाती हूँ, उसके बाद गोश्त और फिर चावल।
0: खाने की तरतीब ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए तजवीज़ की जाती है, लेकिन इस मर्ज से बचाव के लिए भी ये मौसर है। सबसे पहले है कि खाली मेदे की तस्कीन के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए। इसका मतलब गजाई रेशों का ज्यादा इस्तेमाल भी है, जिनसे खून में शुगर की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
1: आज हमने आपको सलाद की जो तरकीब बताई है उनमें खुम्बियाँ, अवोकाडो, टमाटर और प्याज शामिल है, जो सब गजाई रेशों से भरपूर है।
0: और जनाब, इसके अलावा लहमियात खाइए, जैसा की गोश्त और मछली। लहमियात से ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करते हैं। اور خون میں شوگر

0: शुगर की सतह को आसानी से बढ़ा देने वाली रोटी और चावल जैसी नशास्तादार ग़ज़ा को खाने के आखिर में रखिए।
1: जी बिल्कुल गुल साहब, इस तरीके को घर से बाहर खाना खाते हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: और हाँ सोफिया, एक बहुत अहम बात तो रही गई, मोतदिल वर्जिश भी ज़ियाबीतस की रोकथाम और इलाज के लिए बहुत अहम है, लिहाजा जनाब साथ साथ वर्जिश करना मत भूलिए।
1: सामिन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं। हमें उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे। गुल, आज तक हम सलाद को साइड डिश के तौर पर बनाते चले आए हैं, लेकिन आज तो उसको मरकजी हैसियत हासिल हो गई।
0: यानी इसकी मरकजी हैसियत को भी तस्लीम कर लिया गया है। अगर वैसे रोजाना सोफिया ऐसा सलाद हमारे खानों में शामिल हो तो हम सब फिट रहेंगे।
1: जी, और खास तौर पे गुल अब गर्मियों की आमद आमद है, जिसमें ज्यादातर लोग कहते हैं भूख नहीं लग रही, भूख कम हो जाती है, और अगर ये ओकस सलाद की एक पेट रोज खा लें तो काफी नहीं रहेगी।
0: लेकिन सोफिया, आज की तरकीब में कुछ अज्जा ऐसे हैं जो हर जगह मेरे ख्याल है कि आसानी से दस्तियाब नहीं होते, तो क्या इसके लिए आपने कोई हल तलाश किया है?
1: जी, और इसमें सबसे बड़ा मसला आपको मैं बताऊं, दाशी बनाने का है।
0: जी जी,
1: जिसके लिए फिश फ्लेक्स तो हर जगह मिलते ही नहीं है, लेकिन फिक्र ना करें, उसकी जगह चिकन सूप भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: चलें, ये मसला तो आपने हल कर दिया, अब ब्रोकली का निम्बल बदल भी बता देना।
1: गुल, ब्रोकली वैसे अक्सर जगहों पे मिल भी जाती है, लेकिन अगर कहीं ना मिले किसी इलाके में तो फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर को डाला जा सकता है। गोभी के छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ मिनट के लिए उबाल लें, उसमें अगर नमक भी डाल दिया जाए तो अच्छा ही है। गोभी जब नरम हो जाए तो गर्म पानी से निकाल कर ठंडे पानी में डाल दीजिए और सलाद में शामिल कर लीजिए।
0: चलें जी, इस चैलेंज में तो आप हो गई पास। अब मेरे पास एक और सवाल है, और सवाल ये है कि शिमी जी, मशरूम का क्या करें? हमारे यहाँ तो एक ही किस्म का मशरूम ज्यादा जाना जाता है और वो भी हर जगह नहीं मिलता।
1: ये मसला तो है, लेकिन गुल आपने देखा होगा कि एक जो मशरूम है वो वही डाल लें जो मिलता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं भी मशरूम ना मिले तो, और किसी को अक्सर ये होता है कि जायका भी पसंद नहीं आता है, तो उसमें बीन्स या ऑलिव भी बेहतर नेमुल बदल हो सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, सलाद में मुख्तलिफ अकसाम के बीन्स और तोफू तो मैं भी जरूर डालती हूँ, बड़े मजे के लगते हैं।
0: सोफिया, माफी चाहता हूँ, मगर एक और मसला भी है।
1: जी जी बताएं।
0: और वो मसला ये है कि झींगे।
1: जी,
0: कुछ लोगों को एलर्जी होती है, किसी को पसंद नहीं होते, तो उनका क्या करें?
1: जी, और किसी को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती है। जी जी, मैं खुद कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको बिल्कुल ये पसंद नहीं, देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन चिकन जिंदाबाद, उबले हुए चिकन डाल दीजिए, लेकिन अगर सी फूड वाला ही खाना है सलाद तो फिर मछली डाल लें।
0: भी सोफिया, कच्ची तो नहीं डाल सकते मछली को हम?
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: तो क्या इसे भी झींगे की तरह उबाल लें तो? या और आपने ये तो बताया ना कि मछली कौन सी अच्छी रहेगी?
1: कोई भी मछली जिसका गोश्त सफेद हो, ले लें और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें चकोर।
0: अच्छा।
1: सोया सॉस, काले मिर्च और नमक डालकर इसको पकाएं और ठंडा करके सर्व करने से कुछ देर पहले ही सलाद पर फैला दीजिए।
0: बहुत खूब, वैसे लगता है कि आज आपने ठान लिया है कि सलाद सामीन से बनवा कर ही छोड़ेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: कोई बहाना नहीं चलेगा कि अज्जा दस्तियाब नहीं थे।
1: जी,
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं।
3: जी सामीन, प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। सामीन, तश्वीशनाक बात यह है कि आजकल जापान समेत दुनिया भर में पहले के मुकाबले में हर उम्र के अफराद में डायबिटीज के मर्ज में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसलिए मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल अब बहुत जरूरी हो गया है ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। आप भी हमें बताएं कि आप इस मर्ज से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।